जय जो मारी जगी नंदी बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जय जो थारे तो कारण ये